मिल पीवो भाई। कई बारी मन विच आउंदा है कि बाणी नाल आंतरिक यात्रा करिए कि आ जो बाहरी साडा भेख है इस नाल जुड़िए। बड़ा वड्डा कंट्रास्ट सानू नजर आउंदा दोवां दे विच, पर जदों बाणी साडी साडी कपट खोलदी है, कपाट खोलदी है, कपट नहीं कपाट, उस वेले पता लगता है कि सारा एक कंटिन्यूटी दे विच है। गुरु नानक पातशाह तों लैके गुरु अंगद पातशाह फरमा रहे ने, गुरु अर्जन पातशाह फिर फरमाउणगे, गुरु रामदास पातशाह ते सवेरे ही लग जांदे ने आसा दी वार, हर अमृत पीने आसा दी वार विच असीं सारे गायन करदे हां। और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन गुरु गोबिंद सिंह दसम पातशाह तक आके हुंदी है। सो उस रंग तक पहुंचदिया नित्रे ते केवल पांच ही सी ना, हजारां दे इकट्ठ दे विचों सारे नहीं सी आए, उस दे रंग विच रंगे होए। उस मंजिल तक पहुंचण दे लई सानू गुरु पातशाह फरमा रहे ने कौन, जिन्हां दे असीं पुरब मना रहे हां, जिहड़े गुरु नानक दे संग लग के उहनां दे अंग लग के अंगद हो गए। लैणे तों अंगद तक दा सफर असीं सारिआं ने तय करना है, और किवें करना है, बाणी दीआं पैड़ां बाणी दे स्टैप्स दे उत्ते चल के। नानक अमृत मने माहे, बाहरी रिचुअल करदिआं करदिआं कई वारी असीं मन दी खेड़ नूं भुल जांदे हां, पर गुरु पातशाह

पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा के हा सो कर के हा जित बह सर्ब संभाले

पावन तुदनौ चित गुपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनौ ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनौ इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनौ सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनौ साध बिचारे गावन तुदनौ जति

तिस पाछे बचरे चरिया। तिन कवन कलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सद बल जाई।

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी।

रहाओ। सब तेरी तू सबनी ध्याया, जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया।

हर गुण सद ही आख वखाणे, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब हुए, तुद बिन दूजा अवर न कोई, तू कर कर वेखह जान है सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तेत सरवरड़ै।

शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बात बेनती चौपाई हमरी करू हाथ दै रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु आप हाथ दै मुहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै।

आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करे।

है हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पी

सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने घट घट के पट पट की जाने। जब करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब आद नील अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको पेव न पावत वेदा। ताका कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का पीनत न पेव। आप अपनी बुध है जेती बरनत पिन पिन तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा। एक है रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी उत्भुज कान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा। शिगरी सृष्ट दिख

अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु, ताके ताप तनक मह हरिहु, रिद्ध सिद्ध कर मुँह सब हुई, दुष्ट छाह छवस कह न कोई, एक बार जिन तुम्हें सुबारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारू कहा,

सिमृत शास्त्र वेद सब बहुपेद कहे हम एक न जानियू श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहू सब तुहे बखानियू दूहरा।

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।

जेह लग पव जल तरना, बिनत करूं अरदास सुनहो जे ठाकुर पावै। देह दर्स मन चाऊ भगत एहु मन ठहरावै। बल्यो चिराग अंध्यार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी।

पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आए जे सतगुर अगै घालिया।

तुम ते होए सो आग्या, तुमरे गत मित तुम्हें जान, नानक दास सदा कुर्बानी। पूर्णा जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है। जिस डिठे सप्त हो जाए तेग बहादुर सिमरया करना त्यावे ताए। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी। सब थाई हुए सहाय दसम पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के निठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हे सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां ना चराए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीते धर्म निहारिया सिखी के साथ सत्संग नभाई तिना की कमाई का ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चितावे चितावन का सदका। सर्व सुख है जहां जहां खालसा जी साहब तह तह रिश्यारियाय देखते फतेह ब्रत के पाए पंथ के जी श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नामदान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुग हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत का रखा आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख। अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जी श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी ने बख्शो हिन माण्यो के माण नितान्यो के तां न्योटियां दी ओर सच्चे पिता वाहिगुरु तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। आप जी के चरणा च अरदास बेनती महाराज जी आप जी की महान महान बख्शिश हुई पावन हजूरी अंदर रात्रि के दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच आरती शब्द कीर्तन चल रही लड़ीवार गुर शब्द दिया विचार उपरंत अमृत बाणी के शब्द कीर्तन होए। महाराज जी समुची सेवा निभाद्या बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या विचार करद्या आप जी की सेवा संभाल करद्या हुई बेअंत फुला बख्श देनिया जी। अगे वास्ते समर्थ बख्शिश करने शुद्ध गुरबाणी गायन करने का बल उदम बख्शिश करना जी। बाणी का भाव आईया संगतां दे हिरदिआं ते वसाउणा आईया संगतां दी हाजरी दर प्रवान करने सपना दियां तिल फुल पिटावां दर प्रवान करनियां सपना नूं दरों करो नामदान। गुरसिखी जीवन बख्शिश करना चढ़दी कला बख्शिश करनी कृपा करनी महाराज जी दुखां कलेशां रोगां का नाश करना जी सुखां का प्रकाश करना देशां विदेशां विच रखिया बख्शिश करनी महाराज जी। बेन संगतां दूर दुराडे बैठे घरां विच लाइव गुरबाणी दे जाप सरवण कर रही हैं जाप सरवण करद्या आप जी का धन्यवाद करद्या बेंत मैं गुरु घर वास्ते गुरु घर के सेवादार सिंघां वास्ते आनंद भेटा की महाराज जी। सारी संगत की हारी दर प्रवान करनी सभना की माया सफली करनी किरत कमाइया विच बरकतां पाउणियां श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनियां चढ़दी कला बख्शिश करनी जी। आप जी के दर घर के सेव सहज पाठ अते अरदास लई वाहिगुरु जी का शुकराना करद्या बीबी हरपद दीप कौर रतिया गुरु घर वास्ते 501 डालर माया भेटा कर देन कृपा करनी महाराज जी। सेव परिवारों की भेटा दर प्रमाण करनी श्रद्धा भावनावां संपूर्ण करनिया गुरबाणी के पाठ करदिया हुई बेंत फुला बख्श देनिया जी। इसे तरह अपनी नाम बढ़ने जोड़ी रखना चढ़ती कला बख्शिश करनी कृपा करो महाराज जी। सिख पंथ विच एकता प्रेम भावना की दात बख्शिश करनी जी। खालसा पंथ नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी महाराज जी। इस वेले दीवाना की संपूर्णता होई पावन पवित्र हुक्मनामा बख्श के सारिया संगतां नूं निहार करो जी। से गुरमुख प्यारे मेरे नाल जिन्ना मिलिया आप जी का नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਪਹੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਪੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸ ਉਤਰੇ ਪਾਰ।

त्रास एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रखो सर एक अरदास पाठ कीरत की

नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहि मिटावो सिमरो जास विशंबरे कै नाम जपता गंत निकै वेद पुराण सिमरत सुदाख्यर कीने राम नाम एक आख्यर।

चारु सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन तरै, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभु कै सिमरन भउ न ब्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै, प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद्ध, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन बिन सह दूजा, प्रभु कै सिमरन तीरथ इसनानी, प्रभु कै सिमरन दर गहमानी, प्रभु कै सिमरन हुए सुफला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला, से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए, प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु कै

प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता।

सिमरन पूरे भाग, प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहू न झूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निहचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल विगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पाया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया, श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जय महाप्यान दूत जम दल, तह केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल हुवे अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी, अनिक पुनः चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कूट पापर हरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया, लाख करोरी बंधन पर है, हर का नाम जपत निस्तर है, अनिक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत आघावे, जे मार्ग जात अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याइय, नानक गुरमुख परम गत पाइय, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत है पार पराही,

जय महाप्यान तप्त बहुकाम तय हर के नाम की तुम परछाम जा त्रिकामन तुझ आकर कह तह नानक हर हर अमृत बरकै भगत जना की बर्तन नाम संत जना कह मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कह नाम उदरे जनकूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औकत साध कमात हर जन कह हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनु दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बबेकै।

रूप रंग, हर नाम जपत का पर न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहीं बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै मालिक जीना, हर तन जन कुआ प्रभु।

न जानी पोत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गामु सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद्वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संगवट भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है।

सासु सबभूत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संगे कुपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा ही समानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ले साध के संगा वह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेनु साध के संग मनोहर बैनु साध के संग न कतहूं तावे साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते पिन्नु साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु के संग महापुनीत साध संग किस्यो नि बैरु साध के संग न भीगा पैरु साध के संग ना ही को मंदा साध संग जानी परमानंदा साध के संग ना ही होता पू साध के संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध के संग न कब हूं तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस तगु चिर लह साधु के संग अजार सह साध के संग बस थानु चय साधु के संग मेहर पहुँचय साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदानु नानक साधु के कुर्बानु साध के संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु के संग सो धन पावे जिस धन ते सब को वरसावे साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायनु साध संग अमृत गुण गायनु साध के संग सर्व थान गामु नानक साध के संग सफल जनमु साध के संग नहीं कचकाल दर्शन पेट तो होत निहाल साध के संग कलुकत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग इहा उहा सुहेला साध संग बिछुरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाऊ साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध के संग लग्या ब्रह्म विटा साधु कै संग कट कर डिठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत कई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पिटे संजोग साध की महिमा वेद न जान है जेता सुने तेता बखियान है साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बनियाई नानक साध प्रभ भेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे किस बिन कोए नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप जैसे जल रह कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी का दृष्ट समा जैसी राज रंग कौला गय तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह धीरज एक ज्यो बसदा को खुद को चंद लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाऊ नानक ज्यो पावक का सह सुभाऊ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मन हुए प्रगास जैसे तारू पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी कुप्रयास
ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी कै ना ही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखानै, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जानै, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पारु, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक और धारै जो अंतर नाम, सर्व में पिक है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानको अपर सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पिक है नितर, साध की टहल संसंग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद भिखिया पर हर है, मन की बासना मन ते टरै, इंद्री चित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को वैसा परस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुवै नि कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछै, केवल भगत कीर्तन संग्राचै, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ वह नाम जपावै, नानको वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सा सुन पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नितनीत, मन तने अर्पै विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंड जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म महसूदै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद प्राण सिमृत बुझै मूल, सुख मह जानै अस्तूल, चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सा संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर धारै, पस प्रेत मुगद पाथर कौतार है, सर्व रोग का औकद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाइए धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सूझी परै, सगल संगा तुम उदास,
ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा तुम हितावै जीवन मुख सो कहावै तैसा हरख तैसा उसोग सदा आनंद तह नहीं बेयोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताय साई जुगत नानको पुर कही है जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित का रख है तैसा तिन्नाओ आपे करन करावन जोग प्रभावै सोई फनहोग पसरे आप होयंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भये निहाल श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पार अवार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपी सर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कांत न पाव है कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिगातम निकोर कई कोट पर दर्व को हिरह कई कोट पर दुख न करह कई कोट मायाश्रम माही कई कोट परदेश पर माही जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बृख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर सगल समग्री अपने सूत धार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जक्की नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच सब ते नेरे सब हुते दूर नानका पलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरक निवासी कई कोट जन्म है जीवे मरह कई कोट बहजोनी फिर है कई कोट बैठ कही खाए कई कोट काले थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चिंत जय जय पाणा तह तह राखी नानक सब किछ प्रभ कह हाथी कई कोट भय वैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ्यास तिनको मिल्यो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुगत किन्नो विस्तार कई बार पसरे उपासार सदा सदा की कंकार कई कोट किन्ने बहुपात प्रभ ते हुए ब्रह्मा सुमात ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होव तात्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नित्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पै सत सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार ने जल थल मही अल सोए अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भावै सोई हो किन मैं थाप थापन हारा अंत नहीं किछ पारा वारा हुक्मे धार अधार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वडियाई नानक समय रहा समाई
ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤੀ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਕੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੂਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣ ਨਾ ਬਚੈ, ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸਤਾਵੈ, ਨਿਮਕ ਮਾਏ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿਆਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਕਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤ ਕਾਲ ਦਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ, ਤਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ਼, ਜੀਵ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਪਣੀ ਬਣਤਾ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਸਹਾਤ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਵ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਉ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਪੁਨ ਥੀਓ, ਕਬਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਬਸੈ, ਕਬਹੂ ਸੋਗ ਹਰਕ ਰੰਗ ਹਸੈ, ਕਬਹੂ ਨਿੰਦ ਛਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਕਬਹੂ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨਹਾਰ, ਕਬਹੂ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁਪਾਤ, ਕਬਹੂ ਸੋਏ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਬਹੂ ਮਹਾਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਬਹੂ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਿਰਵਾਲ, ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਭੇਕਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਕਬਹੂ ਅਪਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਕਬਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਰਾ ਕਹਿ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਿ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹਿ, ਕਬਹੂ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ, ਕਬਹੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ, ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਚੋ ਸੁਆਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਪਾਵੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸੁ, ਮੰਤਨ ਨਾਮ ਰਤੀ ਕਰੰਗ, ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਕਟਾਨਾ, ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗਜੋਤ ਸਮਾਨਾ, ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ, ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ, ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ, ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਵੰਤ ਕਹਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਬੋਜੋਨ ਪ੍ਰਮਾਵੈ, ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ, ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਅਗਿਆਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਨਕੀ ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਈ ਕਰ ਗਰਬਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਰ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ, ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਉਪਰ ਕਰਿਆਸ, ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ, ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ, ਕਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ, ਕਿਸੈ ਨ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੈ ਖੁਆਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰ ਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹੋ ਧਾਰੇ, ਸਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ, ਅਨਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਖ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ, ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਾ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਵੈ, ਹਰ ਦਰ ਗੈ ਕਉ ਕੈਸੇ ਗਵੈ, ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ, ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਂਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਤਬ ਇਸ ਕੋ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ, ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ, ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ, ਤਬ ਲਗ ਨਿਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ, ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ, ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸੁਜਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹੋ ਛੂਟੈ, ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲਗ ਕੋਟ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਅਨਿਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ, ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਕਬ ਕਬ ਮਰੈ, ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ, ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਆਪ, ਸਦਾ ਸੁਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੁ ਆਪਣੈ ਰੰਗ,
ਸਭਤੀ ਦੂਰ ਸਬੂ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਬੇਕ ਆਪੇ ਕਾਪਿਆਂ ਦੇਖ ਮਰੈ ਨ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ਆਪ ਦਿਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਕਿਨੂ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕਛ ਉਸਕਾ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਛੁ ਹੋਏ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਇਕੈ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਚਲਤਾਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਰੰਗ ਆਪਾਰ ਮਨ ਮਯਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਬਾਹੀ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਖਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀਨਾ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਵਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘਟ ਘਟ ਸੁਣੀ ਸ਼ਰਵਣ ਬਕਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਤਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਯਾਰ ਜਾ ਘਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਥੇ ਕੋ ਰੱਖੈ ਨਾ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਪੀਤਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉਂ ਲਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸਭ ਕੋ ਚਲੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਤੇ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨਿਚਾਏ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹੋਏ ਭੀਗਤ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਾਂ ਅਤ ਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਾਂ ਹਤਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆ ਹਰ ਦੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਬ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਭੀ ਹੋਏ ਮੋਖ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸੈ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਡਾਣ ਲਾਗੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਸੰਤਿਆਗੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾਂ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਟਾਉ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅਦ ਬੀਜ ਤੇ ਟੁੱਟੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਕਿਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖੀ ਕੋ ਧਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉੱਜੜ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਅੰਤਰ ਤੇ ਥੋਥਾ ਜੂੰ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਜੜ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਆਪਣ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੀ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਵਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਉਬਾਰ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀਓ ਬਿਲ ਲਾਏ ਜਿਉਂ ਜਲ ਬਿਹੂਨ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੈ ਜਿਉਂ ਭਾਵ ਕਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਥਰਾਪੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਛੁੱਟੈ ਕੇਲਾ ਜਿਉਂ ਬੁਆੜ ਤਿਲ ਖੇਤ ਮਾਹੀ ਦੁਹੇਲਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਮਿਥਿਆ ਕਹਿਤ ਕਿਰਤ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਧੁਰ ਹੀ ਪਇਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥਇਆ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਬਿਗੜ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸੁਜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਸਦਾ ਸਹਿਕਾਈਐ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਜੀਵਾਈਐ ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੀ ਪੁੱਜੈ ਨ ਆਸਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਉਚਲੈ ਨਿਰਾਸਾ ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟੈ ਕੋਈ ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਤੈਸਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਪਇਆ ਕਿਰਤ ਨ ਮਿਟੈ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾ ਸਭ ਘਟ ਤਿਸਕੇ ਉਕਰਨੈ ਹਾਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਸਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਿਸੈ ਧਿਆਉ ਸਾਸ ਵਿਰਾਸ ਸਭ ਕੁਛ ਵਰਤੈ ਤਿਸਕਾ ਕੀਆ ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਦੂਸਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਆਪਣ ਨਾਮ ਦੇ ਬਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇ ਸਲੋਕ ਤਜੋ ਸਿਆਨਪ ਸੁਰਜਨ ਹੂੰ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਮਾਨੁਕੀ ਟੇਕ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਕੈਦੀ ਰਹਿ ਅਗਾਏ ਬਹੁਤ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਏ ਆਏ
मारे रखे को आप मानु कह किस नाही हाथ तिसका हुकुम भूसुख हो जिसका नाव रखंठ पर हो सिमर सिमर सिमर प्रस हो नानक बिघन लागे कोई पुस्तत मन में कर निरंकार कर मन मेरी सत व्यवहार निर्मल रसन अमृत पियो सदा सुखीला कर लह जियो नैनो फेक ठाकुर का रंग सासन बिन सह सब संग चरण चलो मारु गोबिंद मिटे पाप जपिय हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानक पूजल मत्था बड़भागी तेजन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार सीतनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिने निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपन आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै सास संग हर हर जिस कहत सर्व रोग त्योहार जन रहत अंधिन कीर्तन केवल बख्यान ग्रस्त में सोई निर्वाण कुकर जी जन की आशा तिसकी कटिए तिस की कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसे न लागे दुख जिसको हर ब्रह्मन चित आवे सो संसुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सो दसो दसो दसी जिया गुर प्रसाद सबू जिया जब देखूं तब सब किच मूल नानक सो सुखम सो ये स्थूल न कि जन्मे न किच मरे अपन चलता भी करे आवन जावन दृष्टन दृष्ट आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट आपे आप सगल मैं आप अनिक जुगत रचताप ताप अविनाशी नाही किच खंड तारन तार हो ब्रह्मांड अलख पे मुख प्रताप आप जुफाए था नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सो बावंत सगल संसार उदर तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदार प्रभ के सेवक दुख विसारण आपे में लय कृपाल गुर का सब जपय निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे बिडभागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरुषोत्तम कर मान जो किछ करे सुप्रभ कह रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाए हुए सो होए करने हार पछाने सोई प्रभु का किया जन मीट लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे ते समाए समाए हुई सोए ओए सुख निदान नू बने आए आपस को आप दिनु मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभिरता जन नार जाके सिमरन उदरी है नानक दिस बलिहार उस्तपदी टूटी गांड नहार गोपाल सर्व जी आया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न होए जिस सो प्राणी लोचै कोए तिस बिना ही तेरे किछ काम गत नानक जपे कर नाम रूप तोय नाही मोह है प्रभ की जो सगल कट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ जा सब किस तिसका दिया दर बैत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहता वै जे को हुए बह दातार तिस देन हार जाने गावार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सदा अरोग जो मंदर को थामे थम्मन त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन ज्यो पाखान आव चढ़त रहे प्राणी गुरचरण लगत निष्ठा रहे ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन देख मन हुए बिगास ज्यो माँ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बांछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिललाइये पूर्व लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कछ करे सोई सुख मान पूला काहे फिरे अजान कौन बसताई तेरे संग लपट रे रस लुभ विपतंग राम नाम जप हृदय माए नानक पद सिद्धि कर जाए जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज मान लेहु मन भूल राम नाम हृदय में थूल लाद की संत संग चाल अवर त्या विकिया जंजाल धन धन कह सब कोय मुख उजल हर दर गै सोय यो अपार विरला वपार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तुए तुए पियो
अर्प साधु को अपना जीव साधु की धूर करो इस नानु साधु पर जाइये कुर्बानु सा सेवा विड़पागी पाइये सा संघार कीर्तन गाइये अनेक बिगंते साधु रखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे उठ गई संत दरे आया सर्व सुख नानक ते पाया मृत कौ जीवालन हारो भूखे को देवता दारो सर्व निदान जाके दृष्टि माही पूर्व लिखे का लहना पाई सब किस तिसका करण है जोग तिस बिन दूसर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्यूच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभु चीत भगत भगत सुनिए ते लोई जाके हृदय को हुए सच करनी सचता की रह तो सच हृदय सतमुख कह तो सची दिर सचा आकार सच वर्त सचा पासार पार ब्रह्मजन सच कर जाता नानक सूजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग के चित्र गुण ते प्रभिन्न तिसे बुझाए नानका जिस हो वह सुप्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन में राख मानु की तु प्री त्याग तिस्ते पर नाही किस को सर्व ने अंतर एक आपे बिना आपे ताना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बख्शन सा तेरे की चरणी पाओ नानक के मन हो अनुराव मनसा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सोई हो हरण परण जाका नित्र भोर तिसका मंत्र न जाना होर अण ध्रुव मंगल सजा कह सर्व थोक सुनिह करता कह राज में राज योग में जोगी तप में तपीश्वर कृष्ण में भोगी त्याय तय भक्त सुख पाया नाम त्रिपुर का किन्त न पाया जाकी लीला की जाकी लीला की मित नाही सगल देवारे अवगाहे पिता का जन्म के जान पू सगल पुरोही अपना सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जिनदास नाम त्या वैसे थे गुण मैं जाको परमाए जन्म मरा फिर आवै जाय उच नीच के स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जा नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना बिद किनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे किन माए पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कट तिसके सब तिसके ठाऊ जब जब जीव नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सपवन नाम के संगुदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समाहि समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सफली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जाके हृदय प्रवेश सत निरत बुझै जे कोए नाम जपता की गत हुए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सो करण हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो तिस भाव है सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझिया तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रही गुरु कै बचन पदार्थ लही हुए दाते दुकाटन हार जा कै संगतर है संसार जन का सेवक सोवट भागी जन कै संग एक लिवलागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक बल पावै श्लोका सच जुगा सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया जा कर हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निर्भउ होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहि समाना
बस्त माहिले बस्त गडाई ताको पिन्ना कहना जाई बूझे बूझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की रखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभु धार है नानक सो सेवक सा सा सुमारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवक की सर पर राखे अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राखे ताकि गत मित कहे ताकि गत मित कोई न लाखे प्रभु के सेवक को कू न पहुंचे प्रभु के सेवक कुछ दे उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल राख है भस्म कर लश्कर कोट लाख है जिसका शासन काट आप ताको राखत देकर हाथ मानस जतन कर्तव्य पात तिसके कर्तव्य बिरथे जात मारन राखे अवर न कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करहरे प्राणी जप नानक प्रभ अलक विडानी बारंग बार बार प्रभ जपी है पी अमृत्यो मन तंत्र पी है नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किच अवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग नाम रस जो जन तृप्ताने मंथन नाम मह नाम सुमाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कह सदकाम बोलो जस जे पा दिन रात प्रभ अपने जन कीनी दात करै भगता तम कह छाए प्रभ अपने सो रह सुमाए जो हुआ होत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानू तिसका गुण कह एक न जानू आठ पैर प्रभ सह हजूरे कहो नानक से ही जन पूरे मन मेरे दिन की ऊट ले मन तने अपना तिन जन दे जिन जने अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख हो तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर्श पाप मिटावे हवर सयानप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न हो भी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद फैरा श्लोक सतपुरख जिन जाने आ सतगुर तिसका नाओ तिसके संग सिकुदरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतपुर सिक्की करे प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिक्के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हट है सतगुर सिखो नाम तन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिखा हलत पल सवार है नानक सतगुर सिखो जी नाल सुमार है गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कचना जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बिच है सतगुर के पास ते सेवक के कार्य दास सेवा करत हुए निकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा हिसाब करे नानक सो सेवक गुर की मथले बीस विश्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता अठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ भरम सह सियानप लया न जाइये नानक ऐसा गुरु विडभागी पाइये सफल दर्शन पेकत पुनीत परसत चरणगत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की तर

अमृत पीवे अमर सो होय इस पुर का ना ही कदे विनाश जग मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदे सेवक को दे मोह माया कै संग न लेप मन में राखे हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परमो दुख तह तिनासे तब तमाही ठाठ वरताई अनंत भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पौ चूका निरपो हुए फसे सगल ब्याद मंते कह नसे जिसका साथिन कृपा तारी सा संग जपना मुरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर एको सोए उत्पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनिक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिकिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक उतनसार अष्टपदि संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार और उपाव समीत विसारो चरण कुमर हृदय में उतारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत धन सुनचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंते का सरा कुमन बाई सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनिक पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवकद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन प्रबुद्ध हर कै नाए दा जिस ताव तावै ठाए ताकु बिघन न लागे कोई जा कर दे बसे हर सोए कल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ औ बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाए अत प्रगास तित कर जाए बसे बिनासी कौ नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा वाह गवन मिटै प्रभ से वाह त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का हुए उधारु हर हर सिमर प्राण आधार अनिक भावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चाल स्थिर तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुतमीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कवन सुनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे न बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मातू ले यानी भगत बिना बोडू बेस्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो जीत चरण कमल राखो मन माही जन्म जन्म के किल बिख जाही आप जपहु अवरा नाम जपावहु आप जपहु अवरा नाम जपावो सुनत खैत रहत गत पावो सार पूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानु गुण गाओ तिर उत्तर समैल बिन सुजाए हम मैं बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास सर नाम सुभार चाड़ सुयान सगली मना सास पावे सच तना हर पूंजी संच करो बिहार यहाँ सुख दर गै जयकार सर्व निरंतर एको दे कौ नानक जाके मस्त कलेख एको जप एको सा लाही एक सिमर एको मन आई किसके गुण गाओ नंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूरे हो प्रव्याप अनिक विस्तार एक ते भयक अराध प्राचित गए मंथन अंतरिक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदि जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्मिर श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्याओ चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करूं प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगा नाम प्रभ सारू प्रभ की दृष्ट महासुख हुए
हर रस पावै बिरला कोई, जिन चाख्या से जन तृप्तानी।

पूरन पुरख नहीं डोलाने। सो भर भरे प्रेम रस रंग पुजै चाओ साध तै संग परे शरणवान सब त्याग अंतर प्रगा संदिन लिवलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रत्ते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काठ मुख जन भया जन मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सपूरी रब रहया सत्संग हजूरी जिसका साथिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जी काल न पाने सो क्यों बिसरै जी किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरै जी जीवन जिया सो क्यों बिसरै जी अग्न में राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जी बिकती काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै गुर पूरै तथि है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहु काम आन त्याग जपो वर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहु आप जपहु अब रह नाम जपावहु भगत पाए तरिय संसार बिन भगति तन होसी चार। सर्व कल्याण सुख निद नाम बूटत जात पाए विश्राम सबल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुणतास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाहो मंत नियंतर ही सुहाओ नेत्रोपेक दर सुख हुए मन बिकसै साध चरण धोए भगत जना कै मंत्र रंग बिरला को पावै संग एक भस्त दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शन दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपै सुहे पुनीत भगत पाहि लावै मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निम घर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई भो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सु करनी सुख तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सासन प्रभ देहो निवास। सर्व सुख नानक प्रगास लोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। अष्टपदी जब कार्य कचन दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सो कहो किसे व्यापत जब अपन आपा पार ब्रह्म तब मोह का किसोत परम अपन खेला वर्ती जा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक हरगम पार तब नरक सुर कौ कौन उतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अविनाशी सुख आपन आसन कह जन्म मरण को कहा बिना सुनो जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अभिगत गुचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किच पूछत लिखा जब नाथ निरंजन गुचर वादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपन आप आपी चर जाओ नानक अपन रूप आपी उपर जाओ जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तै बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तै कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै छल छिद्र लगत को कीस
जय जोत रूपी जो संग समावै तह किसे भूकवन तृप्तावै करन करावन करने हार नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पै परवीन तय बेत देव कहा कुचीन। जब अपने आपा पुर धारै तो सगन सगन कहा विचार है। जय अपन ऊचापन आप नीरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चीरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जय छल छेद भेद समाया उहा किसे व्यापत माया। आपस को अपया देश त्यो गुण का नाही प्रवेश। जय कहे केक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता। जय अपन आप पथियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत उच देव चा नानक आपस को अपै पहुंचा। जय आप रचियो प्रपंच कार त्यो गुण में किन्नो विस्तार। पाप हुन तय पही कहावत को नर को सुरख बंशावताल। जल माया जंजाल हम मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बखियान। आपन खेल आप कर दिखै खेल संकोचै तो नानक कै। जय अभिगत भगत आप जय पसरै पासार संत प्रताप। दुहु पाका आपे धनी उनकी शोभा उनहु बनी। आपह कौत करे आनंद चूज आपह रस भोगन निर्जोग। जिस भावै तिस आपन ना इलावै जिस भावै तिस खेल खिलावै।

नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आप एक आप विस्तार जात इस भावे ता सृष्ट उपाई आपने भाणे लई समाई तुम ते भिन्न नहीं किछ होए आपन सूत सब जगत परोए

अनाथ को नाथ। जिस राखै तिस कोई न मारै, सो मुआ जिस मनो बिसारै, तिस्ता जावर कहा को जाई, सब सरेक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानू साथ। गुण निदान बेअंत पारू, नानक दास दा बलिहार। पूरन पूरहे दयाल, सब उपर होवत कृपाल। अपने कर्तव जाने आप, अंतर जामी रहो व्याप। प्रतपालै जीअन गौ पात, जो जो रचियो सो तिसै तिहात। जिस भावै तिस लय मिलाई, भगत करै हर के गुण गाई। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक इक जानिया।

अष्टपदी संत संगंत्र प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्कट माही अनिक रंग।

आव आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। सलो पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर फेक। सा सा सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे छिंद। आस नित्या गुतरंग, संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेनती करो, सा संग अगन सागर तरो। हर तन के परले हो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद। नरक निवार उधारू जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित वो नारायण एक गुरु बुजा के रंग। ने गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है दार। उत्तम श्लोक साध के वचन अमलिक लाल। रतन सुनत कमावत हो तो धार, आप तरह लोक कै निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाखे मन लागा हर रंग। जय जय शब्द नाहत वाजय, सुन सुन अंत करे प्रभु का। जय प्रभु टे गोपाल महत कै माथे, नान कुदरे तिन कै साथे। शरण जोग सुन शरण ही आए, कर कृपा प्रभा मिलाए। मिट गए बैर भय सब रैन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। हाल जंजाल विकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निभे खेप हमारी। प्रभ की उस्तुति करो संत मीत, सावधानी काबर चीत। सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निदान। सर्व इच्छा दा की पूर्ण होए, प्रधान प्रभु प्रगट सब लोए। सब थे उच पाए स्थान, बहुर न होवे आवन जान। हर तन खाट चलै जिन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नव निध, बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध। विद्या तब योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कहमत सगुण ते उदास। सुंदर चतुर तत् का वेता, समदर्शी एक दृष्टिता। ये फल तिस जन कै मुख भनी, गुरु नानक नाम वचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोए, सब युग मैं ताकी गत होए। गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखानी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जाखै मस्तक करम प्रपाए, साध सर नानक ते आए। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत। जन मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ देहे तत्काल उधारै। निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक ना मन माहि समानी। दुख रोग बिन से पै परमु, साध नाम निर्मलता के कर्मु। सब ते उचता

सुखमणि सुखमणि सुखमृत प्रवनाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

नाम कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सह सियाणपां लख होहे तां इक न चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इकना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहे ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जानै निसाण गावै को गुण वड्याईया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट दिंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ अपार आखै है मंगै है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलियै जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख दुआर नानक एवै जानियै सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावीए गुणी निधान गावीए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौं जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीता अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोय ना सूजै जे तिस गुण कोय करे सुणै सिद्ध पीर सुरनाथ सुणै धरत धवल आकाश सुणै दीप लो पाताल सुणै कोहे ना सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुणै दुख पाप का नाश सुणै ईसर बर्मा इंद सुणै मुख साला हनुमंद सुणै जोग जुगत तन भेद सुणै सासत सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुणै दुख पाप का नाश सुणै सात संतोख ज्ञान सुणै अठ सठ का इशनान सुणै पढ़ पढ़ पावै मान सुणै लागै सहज त्यान
नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, सुना है सारा गुणा की गाह, सुना है सेख पीर पात साह, सुना है अंधे पावे राह, सुना है हाथ होवे असगाह। नानक भगतां सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछुताए, कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोहे चोटा ना खाए, मन्ने जम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने पावह है मूख दुआर, मन्ने परवारै साधार, मन्ने तरह तारी गुर सिख, मन्ने नानक भव है ना भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पाव है दरगह मान, पंचा सो है दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करै विचार, करते कह करण नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवे सचियार, तबलै उपर किता पार, धरती होर पर होर तिस ते पार, तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया गुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया किता होए, केता तान स्वालिहो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख ताप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राहे ही उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंधपोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वाड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच कह विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे हे सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जेव फुरमाए तेव तेव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, परिये हाथ पैर तन देह, पानी धोता है उतर सुखेह, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओह धोए, परिये मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, उन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवहो जाहो, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान, सुनया मन्या
मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए वैण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन जाओ। कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माह कवन जित हुआ आकार। वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कादिया। जे लिखन लेख पुराण थित वार न जोगी जाने रुत माह न कोई। जा करता सिर ठीकाओ साजे आपे जाने सोई। केव कर आखा केव साला ही क्यों वरनी केव जाना। नानक आखण सब को आखै इक दो एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का होवै नानक जे को आपौ जाने अगै गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात। सहस अठारा कहन कतेबा असुलो एक तात। लेखा होए ता लिखी है लेखा होए विनाश। नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। सलाही सलाही एती सुरत ना पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानिए। समुंद साह सुलतान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होवनी जित समन होना विसरा है। अंत ना सिखती कहन ना अंत अंत ना करण देन ना अंत अंत ना वेखण सुन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत। अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार। अंत कारण केते बिल लाहे ताकि अंत ना पाए जाहे। एहो अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। ए वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे कहो जाने सोए। जे वड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए। किते मंगा है जोध अपार किते अगणत नहीं विचार। किते खप तुट है वेकार किते लै लै मुकर पाहे। किते मूर्ख खाही खाहे कितिया दुख भूख सद मार। ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणै होए। होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए। ओह जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे। आख है से पे केई के जिसनु बख्से सिफत सलाह। नानक पात साही पात साह। अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार। अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे। अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान। अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान। अमुल अमुल आख्या न जाए आख आख रहे लिवलाए। आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े कर है वख्याण। आख है बर में आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद। आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध। आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव। केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे। एते कीते होर करे ता आख ना सका है केई के। जे वड पावै ते वड होए नानक जाने साचा सोए। जे को आख है बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार। सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले। वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे। केते राग परी स्यों कहियन केते गावन हारी। गावै तुहनो पौन पाणी बैसंत्र गावै राजा धर्म दुआरी। गावै चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारी। गावै ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी। गावै इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले। गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे।
गावन पंडित पढ़ नर कीसर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चित ना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस पावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पात साह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करहै बेभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वज नाद आप नाथ नाथी साब जाकी रिद सिद अवरा साद संजोग विजोग दोए कार चलावह लिखे आवह पाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमाण ओ वेखै ऊना नदर न आवै बहुता एहो वेडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बौ लख हो है लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश ए तरा हे पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती ताप रखी धर्मसार तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवाण नदरी कर्म पवै नीसाण कच पकाई ओथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़िया रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन सुमुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद बिनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाट घड़ी है बहुत अनूप
ताकियां गलां कथियां न जाहे जे को कहे पिछे पछुताए तिथे घड़िए सूरत मात मान बोध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना ओहे मरै न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै के लो करै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत न अंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकम तिवै तिवकार वेखै विदसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पाहारा धीरज सुनियारो अहरण मत वेद हथियार पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िए शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खिलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै के दूर जिनी नाम ते आया गए मशकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मशकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवें शपै छंद त्व प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनभाव प्रकाश अमितोज केह जह कोट इंद्र इंद्राण साहु सहाण गणि जय त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथै कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रयात छंद नमस्तवंग अकाली नमस्तवंग कृपाली नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाय नमस्तंग अजाय नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अशेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सो एकै नमस्तंग अनेकै नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निरपरमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निरपेशे नमस्तंग निरनामे नमस्तंग निरकामे नमस्तंग निरताते नमस्तंग निरकाते नमस्तंग निरतूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निरतापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग तिरमाने नमस्तंग निधाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग तिरवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग सजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमज्जबे नमस्तस्त अज्जबे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अपेशे नमस्तंग निरतहमे नमस्तंग निर्बामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्त देवै नमस्तंग अपेवै नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वपहुने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे
नमो काल काले नमस्त दयाले नमस्तं अबरने नमस्तं अमरने नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतंदे नमो सत अबंदे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्त रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वपूखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो योग योगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचांज है अमीक है रफीक है अतंत है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अलाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पहुणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रभंगी प्रमाथे समस्ति बेभूते कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राज वेश्वरंग परम रूपे नमो योग योग वेश्वरंग परम सिद्धे नमो राज राज वेश्वरंग परम मृदे नमो शास्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो योग योग वेश्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहंग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग इसनानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बिरद कर्ता अदो उर्द अर्धं अगं ओग हर्ता परं परं परमेश्वरं पुरुषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदि अपेदि अनामं अकामं समस्तु पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग प्रमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते नमो रोख रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट शांत त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पुन काल यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल
नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग यत्र तत्र दिशा विशा होए फैल्यो अनुराग नाम काम बहीन पेखत ताम हू नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानहि जिह बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरै चतुर चक मानहि पुर तीन लोक चौदह है के बिखै जग जाप ही जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयंभव गड़न पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पेख सर्व शास्त्र न जानहि जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाकत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मधुभार छंद त्वा प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुपाओ प्रकाश नेस दिन अनास आजान बाहो साहान साहो राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपह अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपह निकाम आतदूत प्रचंड मेत गत आखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडंड बाढ़ चाचरी छंद त्वा प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे आकामे उयंग प्रयात छंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वरती चत्र चक्र पारती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रतिशय अदिशय अदृश्य अकृशय भगवती छंद त्वा प्रसाद कथ के अशिज देसै के अभिज पिसै के अगंज करमै के अपंज परमै के अभिज लोकै के आदित सोकै के अवतूत वरणै के विभूत करणै के राजंग प्रभाहै के धर्मंग तुजा है के अशोक वरणै के सर्वा अपहरणै के जगतं कृति है के शत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूपै के अनपहौ अनूपै के आद अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रंग बहीने के एक है अधीन के रोजी रजा कह रही में रेहा कह के पाक बेअब हैं के गैबुल गैब हैं के अफूल गुनाह हैं के साहन साह हैं के कारण पुनंद हैं के रोजी देहांत हैं के राज कर रहीम है के कर्मंग करीम हैं के सर्वंग कली हैं के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है
केसर बत्र पान है, केसर बत्र मान है, केसर बत्र इंद्र है, केसर बत्र चंद्र है, के सर्वं कली में, के परमं फाही में, के आकल अला में, के साहिब कलम है, के हुसनल वजू है, तमामल रजू है, हमें सुल सलाम है, सलीकत मुदा में, गनीमल शिकस्त है, गरीबुल परसत है, बिलंदल मकान है, जमीनल जमान है, तमीजुल तमाम है, रजू अल निधान है, हरीफल अजीम है, रजायक यकीन है, अनेकों तरंग है, अभेद है, अभंग है, अजीजुल निवाज है, गनीमुल खिराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुगत प्रभा है, सुयुक्त सुदा है, सदैव सरूप है, अपेदी अनूप है, समस्त उपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्त सलाम है, सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, आगाध है, अनूप है, ओवं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभृग त्रिबादे अगंजे अगादे शुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे।

अभगत हैं, विरागत हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलेख हैं, अदेख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, आगाह हैं, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट शांत व प्रसाद, सर्वंहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वंप्राणं, सर्वंप्राणं, सर्वंकर्मं, सर्वंतर्मं, सर्वंजुगता, सर्वंमुक्ता, रसाबल शांतत्वा प्रसाद। नमो नर्कनाशे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे नृपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्राय न पुत्राय न सत्राय न मित्राय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय नृसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभाहे अजय हैं अजा हैं भगवती शांतत्वा प्रसाद। के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशुल सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चराग हैं, के कामल करीम है, के राजक रहीम है, के रोजी देहंद है, के राजक रहंद है, क्रीमल कमाल है, के हुसनल जमाल है, गनीमल खिराज है, ग्रीबुल निवाज है, हरीफुल शिकान है, हिरासुल फिकान है, कलंकं प्रणास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजाइक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, कि नरकं प्रणास है, बहस्तुल निवास है, के सरबुल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परम ईश है, समस्तुल अधीश है, अदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीनल जमा है, अमीकुल इमा है, क्रीमुल कमाल है, के ज्योरत जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, के अमितो सुभाष है, के अजब स्वरूप है, के अमितो विभूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के अमितो अपंग है, मधुभार शांतत्वा प्रसाद। मुनमन प्रणाम, गुणगन मुदाम, अरबर अगंज, हर नर प्रपंज, अनगन प्रणाम, मुनमन सलाम, हर नर अखंड, बरनर अमंड, अनुभव अनाश, मुनमन प्रकाश, गुणगन प्रणाम, जल थल मुदाम, आन शेज अंग आसन अपंग, उपमा अपार, गत मित उदार, जल थल अमंड दिस विश अपंड, जल थल महंत दिस विश बेअंत, अनुभव अनास, कृत तर तुरास, आजान बाहो सा एक सदाहो, ओंकार आद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चित चरण नाम, अन छेज गात, आजिज न बात, अन चंज गात, अन रंज बात, अन टुट पंडार, अन ठट अपार, आडीठ धर्म अतटीठ कर्म, अणब्रण अनंत, दाता महंत, हर बोल मना छंद, त्व प्रसाद। करुणालय है, अरिकालय है, खल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वम्ब्र है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खल खंडस है, प्रतिपार है, करुणा कर है, अजपा जप है, अथपा थप है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अमृतामृत है, करुणाकृत है, अकृताकृत है, तरणीकृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृताकृत है, अमृतामृत है, अजबाकृत है, अमृतामृत है, नरनायक है, खालकायक है, विश्वम्ब्र है, करुणालय है, निर्पनायक है, सर्वपायक है, भाव भंजन है, आर्य गंजन है, रेप तापन है, जाप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मवास है, जास के जास है, पुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग अततंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने,
नमो ज्युद ज्युदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर।

नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अश्री छंद अजय अलय अपहय अभय अभू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अठा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं क्रीमल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं त्व प्रसाद स्वये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिर उकार जोग जति के सुर सुरार्दन सुध सुधा देख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जर जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पूजान के भूप भली बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते पये तो कहां पहे भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बांजत टोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही हाय राज हजारे भूत पवेख पवान के भूपत कौन गन नहीं जात बिचारे श्री पथ श्री भगवान भजे बेन अंत कौ अंत के तम सिधारे तीरथ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब पुराण जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सबै सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बेन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सोद सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरूर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अबचार है सार की तार पशैया तोरत देश मिलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव सनिंदन साचर भूत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिराए जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इस नानक जादित दान अनेक सुअम्बर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पत अंत फसे जम फास करेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पागो ते नर फिर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाहत फ्रियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सब
जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरयो सिर, काहू लै लेंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर आवाची दिशा मैं, काहू पशा को शीस निवायो। को बुतान को पूजत है पाश, को मेरे तान को पूजन थायो। कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। को बुतान को पूजत है पाश, को मेरे तान को पूजन थायो। कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम का वहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दय मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तो जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारी, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर भीषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेवकियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जछन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार ते सही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। घाट घाट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशानै, घाट घाट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा तारत तब देह अपारा। जब अकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपने बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, ओत भुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जीते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जी अस तुज तव सरणी परे, तिनके दोष्ट दुख तहवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टारै तत काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मो हरे हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सकै न कोई।
एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी सर्ब ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता केल बेख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शाय करता श्री अस तुज जब पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो जाहि सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नरके रहै हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सत्रह सहस पणि जय अर्ध सहस फुन तीन कहि जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सुपद्रव ग्रंथ सुधारा स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहूं सब तोहे बखान्यो दोहरा सकल द्वार कौ छाड़ कह गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ पै गहो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों तंगा वह हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरत स्वामी सो क्यों मनहो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा घरता तेरा सब किश है जिस देह सो पावै सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावै नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कहने रे कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया ए वडे आईया कहे नानक सुनो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया पंच दूत तुद वासो कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देहि निमाणी देहि निमाणी लिवै बाजहु क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया इस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कहे नानक लिवै बाजो क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा के लिए वेखो कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सचै सवारिया कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावै पावै ता सो जन दे जिसनू होर क्या करह वेचारिया एक भरम भूले फिरै दह देसो एक नाम लाग सुवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै आव हो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी
कर है कहानी अकथ केरी कित द्वार पाई है तान मान धन सब सौंप गुरु कहो हुक्म मने पाई है हुक्म मने हो गुरु केरा गावहो सची बाणी कहे नानक सुनो संतो कथे हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मोहनी जिन एत भरम पुलाया माया त मोहनी तिने कीती जिन ठगौड़ी पाईया कुर्बान कीता तिसै विटहाओ जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया ए मन प्यारे आ तू सदा सच संभाले एहो कुटंब तुझे देखदा चलै नाही तेरे नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइए ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछो ताइए सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले आगम अगोचरा तेरा अंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जान है जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाणा है आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया कहे नानक तू सदा आगम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा की ने सचा मन वसाया जी जंत सब तुद उपाय एक वेख परसुन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया कहे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां हां केरी बिखम मार्ग चलना लब लोभ अहंकार तज त्रिशना बहुत नाही बोलना खन्यहु तिखी वालहु निकी एत मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी कहे नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली ज्यों तू चला है तिव चला है स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चला है तिवा चला है जिना मार्ग पावहे कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावहे जिसनु कथा सुनाहे अपने से गुरुद्वारा सुख पावहे कहे नानक सच्चे साहेब ज्यों पावै तिवै चलावहे एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया जिन तुर हो लिखिया आया एक फिरै कनेरे कर है गल्ला गली किने ना पाया कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटंब सहत स्यो पवित संगत सबाइया कहंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर तिहाया करमी सहज न उपजै विण सहजै सहसा न जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए सहस जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन तो वाहो शब्द लागहो हर सु रहो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए जियो मैले बारो हो निर्मल बारो हो निर्मल जियो ता मैले तिन जन्म जुए हारिया ए तिशना वड्डा रोग लगा मरण मन हो वे सारिया वेदा मैं नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यों दे पालिया कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो हो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुचै नाही मनसा सच समाणी जन्म रतन जिने खटिया भले से वण जारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहै गुरु नाले जे को सिख गुरु से ती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई जियो रहै गुरु नाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतर आत्मै संभाले आप छड सदा रहै परणै गुर बिन अवर न जाने कोए कहे नानक सुनो संत हो सो सिख सनमुख होए
जी को गुर तेवे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त न पावे पावे मुक्त न होर थै कोई पुछाओ बबे किया जाए अनेक जूनी परम आवे विण सतगुर मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो विण सतगुरु मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारिंग पाणी कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द से ती मन मिलया सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव सकत आप उपाए कहे करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेखाए गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै मुकत शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एक सस्यों लिव लाए कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी तत्तै सार न जानी गुरु बाजाहो तत्तै सार न जानी तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहाणी गुर किरपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया बोलहे अमृत बाणी कहे नानक सो तत् पाए जिसनु अन दिन हर लेव लागे जागत रैन विहाणी माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारिय मनहु क्यों विसारी है ए वडदाता जे अगन मैं आहार पहुँचावै उसनो केहु पोहे न सकी जिसनो अपनी लिव लावै अपनी लेव आपे लाए गुरुमुख सदा संभाली है कहे नानक ए वडदाता सो क्यों मनहु विसारी है जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करता है खेल रचाया जात इस भाणा ता जमया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै बिटहो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनु सिर सौंपी है विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए हर रास मेरी मन बन जारा हर रास मेरी मन बन जारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपे हो जियो लाहा खटे हो देहाड़ी एहो तन तिना मिलया जिन हर आपे पाणा कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा ए रसना तू आन रास राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत कितै जे चर हर रस पलै न पाए हर रस पाए पलै पिए हर रस बौड़ न तृष्णा लागे आए एहो हर रस कर में पाई है सतगुर मिले जिस आए कहे नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरे आ हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया
हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जो तराखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापय, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना पेर जापय। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कह नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुरु सिओ चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरे हर निहालिया। ए वे संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एको है, हर बिन अवर ना कोई। कहे नानक ए नेत्र आंद से, सतगुर मिलया है देव दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो, साचै सुनने नो पठाए, साचै सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सच अलख वेडाणी, ताकि गत कही ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो, साचै सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन, नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी इकना, दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाउ नावनेद, तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नानक हर प्यार है, जियो गुफा अंदर रख कै, वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला, साचै कर गावहो, गावहो तां सोहेला कर साचै, जिथै सदा सच ते आवहे। सचो ते आवै जा तुद पावै, गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है, जिस बखसे सो जन पावहे। कहे नानक सच सोहेला, सच

जिस वह सुपाई सो साहिब सदा संभाली है, जित किता पाई अपना सकालपुरी क्यों काली है, मंदा मोला कीची दे लम्मी नग निहाली है, जो साहिब नाला हारी है ते वे हपासा टाली है, पिछला ही उम्र काली है।

गुरु गुरुवाच तंत्र जामे सतगुरु जी तंत्र साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जग दी ज्योत हाजर हजूर कल युग दी बोतनी मरता सतनी सतगुरु जी आप जी दी हाजरी पढ़ते हैं बेअंत कृषिक माई पायो लो आप जी बण दे सत्कार जो बेअंत माया बेटा कर दे आप जी सारा सिखी दान प्रोसा दान चन्ना कुमला प्यार रखना खजाने पर पुरकने सो आओ गुरु प्यारे सत्संग जो कीर्तन की निक सेवा प्रवान करनी हुई भुला चुका दिमा करनी आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरवण करिए सत्कार योग भाई साहब परमजीत सिंह जी उन्हों पासो अज दे श्री मुखाक दे विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करिए दस रो फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

प्रभ मोहे काबू गाल लावहेंगे। सो कहो टाल गुर सेवी सहज सुभाए, दर्शन परस गुरु कै जनम।

अहनिस दात समार करे। चार पदार्थ लै जग जन्मिया, शिव शक्ति घर वास धरे। लागी भूख माया मग जो है, मुक्त पदार्थ मोहे खरे। करण पलाव करे नहीं पावे, इत उत ढूढ़त थाक परे। काम क्रोध अहंकार व्यापे,

जाकू हर प्रभ नजर करे ते निर्मल पुरख अपरंपर पूरे ते जग में गुर गोविंद हरे हर सिमरहु गुर बचन सुमारहु संगत हर जन पाऊ करे हर जन गुर प्रधान द्वारे नानक।

नानक नाहु न विछुड़े तिन सच्चै रतड़िया। मारू महला पहला ना भैणा पर जाइया ना से ससुड़िया। सच्चा साख न टुटई गुरमेले सैया। बलिहारी गुरे अपने सद बलिहार जाओ। गुर बिन एता भव थकी गुर पिर मेले।

अमृत संग बस्त है तेरा, बिख्या स्यों पुर जायो रहाओ, रतन जवेहर बणजन आयो, कालर लाद चलायो, जे घर मह तुद रहना बसना, सो घर चीत न आयो, अटल अखंड प्राण सुखदाई, एक निमक नहीं तुझ गायो, जह जाना सो थान विसारियो, एक निमक नहीं मन लायो, पुत्र कलत्र ग्रह देख समगरी, इस ही माहे उर्जा इस ही मह उर्जायो, जित को लायाओ तित ही लागा, कैसे कर्म कमायो, जो पयो कृपाल ता सत साध संग पाया, जो पयो कृपाल ता साध संग पाया, जन नानक ब्रह्म ते आयो, मारू महल्ला पंजवा, कर अनुग्रह राख लीनो, पयो साधु संग, हर नाम रस रसना उचारे।

दुख दर्द कलेश बिन सह जिस बसै मन माही मृत नारक स्थान बिखड़े बिख न पूहै ताहे रिद सिद्ध नव निद जाकै अमृता प्रवाह आ

सिमर स्वामी सुख सहज पुंच है नहीं अंत पारावार। अनिक प्राचुत मिट है खिन मह हृदय जा।

व्यापै किन उतरियो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन तेस संगे नहीं प्रीत। बिष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन न मनी विपरीत। ऊच नीच विकार सुकृत संलगन सब

पवित्र अपवित्र है किरण लागे, मन न भयो बिखाद, सीत मंद सुगंध चलेओ, सर्ब थान समान, जहा सा किछ तहा लाग्यो, तिल न शंका मान। सुपाए अभाए जो निकट आवे, सीत ताका जाए, आप पर का कछ न जाने, सदा सहज सुभाए। चरण शरण सनास इहु मन, रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक, पहे प्रभ कृपाल। मारू महला पंजवा, घर चौथा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

हर जस श्रवण सुनावना रहाउ। तुदे आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। संत कृपा ते हिरदय वासै, दूजा भाऊ मिटावना। भगत दया ते बुद्ध परगासै, दुरमत दुख तजावना। दर्शन भेटत होत पुनी।

संत संगत मह लीवना, बिन तागे बिन सूई आनी, मन हर भगति संग सीवना। मातिया हर रस महराते, किस बहुड़ न कबहू उखीवना। मिल्यो तिस सर्व निदाना, प्रभ कृपाल जिस दीवना। सुख नानक संतन की सेवा, चरण संत तुहे पीवना। मारू महला पंजवां, घर अठवां अंजुलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद,

बहुत सजाई पया देसलम मैं, जिन कीता तिसे न जानी अंधा, ता दुख सह प्राणियां। खालक था वह

आपे सारी, आपे पिड़ बादी जग खेलै, आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल तल सागर सरवर, आपे मच कछ करनी कर,

जो दिसै तुझ माहि समाना, नानक नीच भिखिया दर जाचै, मैं दीजै नाम वडाइए। मारू महला पहला, आपे धरती धौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगासं, जति सति संतोखी आपे, आपे कार कमाई है। जिस करना सु कर कर विखै, कोई न मिटै साचे लिखै, आपे करे कराए आपे, आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चाल है, पर घर जो है घर नहीं पाल है, काया नगर टह टह ढेरी, बिन शब्द पत पा जाई है। गुरते बूझ है त्रिभवन सूझ है, मनसा मार मन स्यों लूझ है।

संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अदली प्रभ आपे, परम भेद पहु जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अपुलना

ही केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या सालाही अगम अपार साचे सिरजन हार मुरार जिसनु नदर करे तिस मेले मेल मिले मेलाई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार है।

तिसकी ओठ गही सुख पाया, मन तन मैल न काई हे। जीव रसायन साचै राती, हर प्रभ संगी भौ न पराती। श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मिलाई हे। रख रख पैर धरे पौ धरना,

0: इतनी सेवा प्रवान करनी, कीर्तन करद्या, बाणी पढ़द्या अनेक ही प्रकार दी गलतियां भुलना हो गई होणगियां। सो दास दे जथे वल्लों नवा साल जो चढ़िया है उस सारिआं नूं ही मुबारक अते सतगुरु जी कृपा करन, सारिआं दे घरां दे विच खुशियां खेड़े बख्शिश करन, इसे तरह ही अपने नाल अपनी बाणी दे नाल जोड़ी रखन। सो इतनी अरदास है मेरी। सो बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। जेता समुंद सागर नीर भरिया।